0: क्या बात है,
1: यू
0: क्या
1: सो
0: बात है
1: मच।
0: बख्शी साहब, क्या बात है जी। बाखूब जी बाखूब, फ्राइडे वाला दिन तुसी रौनक लाइया नाल नाल, बहुत बहुत शुक्रिया ते हैव ए नाइस वीकेंड
1: जी
0: तुहानू भी जी।
1: सेम टू यू,
0: थैंक यू,
1: जिंदेबाद फिर,
0: थैंक यू, सत श्रीकाल जी। लो दोस्तों, इस मुहम्मद जी
1: सत
0: बा खूबसूरत ते प्यारी आवाज ते उन्हां दा अंदाज गीत गाउण दा ते एक्सप्लेन करन दा, गल्लां बातां दे विच वी बाकमाल अपना है जिहड़ी गल रखदे है। ते लो दोस्तों, जांदे जांदे संखेप दे विच सब दोस्तां नूं नाल जोड़ के फिर आग्या लैना इक अद्धे मिंट दे विच ही। सुरजीत भारत जी ने इंडिया तों सति श्री अकाल भेजी है ते इसे तरह ही अपने इकबाल मांगड़ जी सत श्री अकाल, सुरेंद्र कौर माल जी ने सत श्री अकाल, हरविंदर जौल भैन जी ने सत श्री अकाल भेजी है। ते लो मामा भैणा ते धीआं नाल जुड़न लग गईआं ने फिर तों अपने नाल, ते वापसी हो चुकी है सब दी। ते माल भैन जी भी चेते करदे सी जौल भैन जी नूं काफी दिनां तों, ते सारे होर भी अपने भरा जिहड़े ने उह भी चेते करदे सी। ते इसे तरह ही अगे राजन सैणी साहब लाइक नंबर 5 कहिंदे ने ते सति श्री अकाल जी सारे प्यारिआं नूं समूहिक रूप दे विच। औजला साहब ने सति श्री अकाल फतेह सांझी कीती है ते सतनाम सिंह जाणिया चल बाई जी ने सति श्री अकाल भेजी है। गुरुमान जी दे बहुत सारे सुनेहे ते सति श्री अकाल भेजी है ते सब दोस्तां नूं भी फतेह सांझी करदे आ, नाल कमेंट भी उन्होंने कुछ लिखे है सारिआं दे, मैं जरूर कॉपी पेस्ट कर दांगा ते बाद दे विच मैं जरूर पढ़ांगा। दोस्तों अज समां काफी हो गया, माफी चाहुंदा कल दे लई वी दोस्तां ने सज्जनां ने पुछिआ सी कल आ नहीं सके। हांजी जिवें आपणे गल करके कहने डेनमार्क तो बाई कहिंदे तुसीं उत्थे लिख दिता कि टैक्नीकल इशू, पर मेरे निजी कुछ रुझेवें सीगे जी ते उस करके मैं माफी चाहुंदा कल नहीं जुड़ पाया। महीने दे विच इक मीटिंग हुंदी है, वह जरूर अटेंड करनी पैंदी है जॉब दी, ते इस करके महीने दे विच इक छुट्टी जिहड़ी मारनी पैंदी है इस करके। ते जेकर टाइम सिर वापस आ जाइए तो जरूर जरूर तुहाडे नाल जुड़ जाईदा आके वापस। ते गुरीमान जी कहिंदे आ सति श्री अकाल सारे दोस्तां नूं, बहुत सारे सुनेहे ने उहनां दे। ते अपने नरिंदर सिंह बाई जी जुड़े हुए ने, सुखबीर बादल ने क्या कीता कहिंदे जी, ते बाई जी शुक्रिया धन्नवाद निघा स्वागत है। हांजी उन्हां दे उत्ते अटैक होया जी, इह गल 2 दिनां तों चल रही है मीडिया दे विच वी। ते इसे तरह ही औजला साहब, गुरीमान जी ते अपने मुकद्दर जी, राजन सैनी जी ते अपने मान सिंह सैनी साहब हेलसिंकी तों सारे जुड़े हुए ने, सति श्री अकाल भेजदे ने। रजिंदर जीरा जी बाई जी जुड़े हुए ने जीरे तों, सति श्री अकाल भेजदे आ सारे दोस्तां नूं, मित्रां नूं ते दुआबा रेडियो दी टीम नूं। ते मुहम्मद जी जुड़े हुए ने, सति श्री अकाल भेजदे आ। ते इसे तरह जगतार भारत जी ने इंडिया तों सति श्री अकाल भेजी है। ते दोस्तों जे किसी दोस्त का नाम रह गया हो माफी देना मैनू। ते सोमवार नूं मिलन दे वादे दे नाल मुलाकात होगी, कल नूं महफल मित्रां दी लैके समाजी सिंह शमी जी जिहड़ा जरूर जुड़नगे ते गल्लां बातां उहनां दे नाल भी 8 बजे भारतीय समें दे अनुसार 2 दिन करनियां तुसीं, ते कुछ गल्लां बातां सुननियां ते कुछ कहणियां ने, ते हर तरां दी गल्लबात उस प्रोग्राम च हुंदी है। ते सोमवार नूं तुहाडा मेरा राबता फिर जुड़ेगा ते 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। दोस्तों चंगा लग्या होवे तां दोस्तां तक मित्रां तक जरूर प्रोग्राम सांझा कर दिओ, ते जांदे जांदे उहनां दोस्तां दा वी धन्नवाद जिन्हां ने प्रोग्रामां नूं सपोर्ट कीता है। हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधू बाई जी, सिकंदर सिंह औजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, मान सिंह सैणी साहब ते बलवीर सिंह सैणी साहब दा बहुत बहुत शुक्रिया ते धन्नवाद है। दोस्तों जरूर यूट्यूब नूं जरूर जिहड़ा सबसक्राइब कर लो, कोई पैसा धेला नहीं लगता। दुआबा रेडियो ऑफिशियल पेज अपना फेसबुक दे उत्ते भी है, उहदे उत्ते भी फॉलो ज्वाइन कर सकते हो। वट्सएप ग्रुप है, उहदे विच जुड़ सकते हो, प्यारा जिहा नाम लिख के भेज दो, ग्रुप च शामिल कर लो। +358 44976 19 वट स्टूडियो का नंबर है उहदे उत्ते जी। ते कोई वाधू मैसेज नहीं आउंदा, ते टैलीग्राम दे उत्ते भी दुआबा रेडियो नूं सर्च कर सकते हो, ते उहदे उत्ते ऑडियो ते वीडियो दे रूप दे विच दोवें रंगां दे विच प्रोग्रामां नूं माण सकदे हो। ते लो दोस्तों वध घट बोल गए, गुस्ताखी माफ, किसी नूं ठेस पहुंचाई होवे तां माफी चाहवांगे। साडा मकसद इह नहीं हुंदा किसी दे विचारां दे नाल मतलब कि सहमति जताउणा हर किसी दे, ते हर किसी दे अपने विचार ने, उहनां दा वैलकम है जी। ते बहुत बहुत शुक्रिया, विचार करांगे तां कुछ दूर तक गल्लां जाणगियां, ते विचार वटांदरे दे विचों ही कुछ ना कुछ चंगी सेध मिलदी है, इही अपना मकसद है। ते जागरूकता इक दूसरे दे विच आवे, फैलाईए, ते जिहड़े दोस्त जां लोक जिहड़े इन्हां चीजां दे विच गुमराह हुंदे आ उहनां चीजां तों बच सकन, अपनी जिंदगी अपने तरीके दे नाल वधिया ते सुखामी परिवारां दे विच गुजार सकन, ना कि जेलां दे विच जां कुछ ऐसे कारनामे करके ते ओह जिहड़ियां अपनी जिंदगी ते नाल नाल परिवारक परिवार दे जिहड़े मैंबर ने उहनां नूं किते ना किते सारी जिंदगी दे लई दुखी करन जां पछतावा होवे, उहनां चीजां तों गुरेज करन दी इही जिहड़ी है ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਨਿੱਗੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: क्या बात है
1: तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी तेरी फोटो वेख वेख होके रहा पर दी तू की जाने तेनू वे मैं किन्ना मिस कर दी ओ डब वाली आजू उठ के पटे आले आजू उठ के वे मैं धरती पैर ना लावां।

0: फिर कहता मुकद्दर सिंह,
1: जी
0: ना बोलो
1: हाँ
0: फिर भी बताता है चेहरा, ये चेहरा हकीकत में एक आईना है। फिर कह दिया, तो बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। वो एक करके एक कहानी लंबी है बापे,
1: जी
0: ये चल ही जानी सारी रात,
1: क्या
0: सारी
1: बात है,
0: रात
1: क्या बात
0: ठीक है।
1: है।
0: पर सारा कुछ किताबां नहीं, चलो ठीक है किताबां भी एक जरूरी ने, पढ़ने वाले चेहरा भी पढ़ लेते ने
1: जी पढ़
0: शमी भाई जी।
1: लेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: ते
1: कोई शक नहीं जी,
0: आही
1: और चोपड़ी
0: आलम
1: आवाज
0: भाव
1: भी
0: भी
1: सुन
0: करे
1: लेंगे जी,
0: साडा।
1: बिल्कुल जी जी
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: थैंक यू मुकद्दर सिंह जी
0: शनिवार ऐतवार लंबा आही गल रख लियो साडा ओही गल।
1: जी जी जी
0: नहीं
1: जरूर जी जरूर
0: वो
1: जी
0: कबूल है जी, बिल्कुल कबूल है जी, वो गुस्ताखियां ने मेरे पदर से जी
1: जी
0: नहीं, कोई गल
1: बिल्कुल
0: ना,
1: जी,
0: फिर मोहब्बत जिंदाबाद ते जिंदगी
1: जिंदगी
0: जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद जी,
0: सत श्री
1: थैंक
0: अकाल
1: यू,
0: भाई जी,
1: जिंदगी
0: बहुत बहुत
1: जिंदाबाद
0: शुक्रिया,
1: जी,
0: सत श्री अकाल
1: जी। हाँ जी दोस्तों, इस जी
0: जी
1: मुकद्दर जी
0: सत
1: जिवें
0: श्री
1: सन ते औजला साहब लिखते ने, हाँ जी उन्होंने लिखिया सीगा पूरन माछी दे बारे, ते कहिंदे कदे पढ़िया
0: जी
1: सी नावल पूरन माछी, मैनू अज भी भुलदी ना ओ चेहरे वाली हासी, ओ तां पढ़िया पूरा पर सुफना रह गया अधूरा, बस लगदा उसे ने सिकंदर दे हाथ कलम फड़ाती है, ते कलम फड़ाई है जां फड़
0: वाह
1: ली है, ते शम्मी जी अपने नाल ओ
0: हाँ
1: जुड़ी
0: हाँ
1: गए ने, ते उन्हां दी जुबानी आपां सुणदे आं गल्लां बातां उन्हां तों। सत श्री अकाल औजला साहब,
0: ठीक है जी,
1: स्वागत है US तों जी।
0: दोनों वीरां नूं सगाए श्रोतियां नूं
1: सत श्री अकाल जी, जियानू जी स्वागत है जी।
0: जी, सत श्री अकाल जी,
2: जो बीत गया वो चंगा है, एवें
1: जी
2: बीते नूं पछताई दा नहीं।
1: क्या बात है जी,
2: सिकंदरा चाहे मुकद्दरा, ये सच सियाने कह के उस बेड़े नूं भुल
1: वाह जी वाह जी वाह जी, क्या बात है
2: पटियाले
1: जी,
2: दे भी फ्लाईओवर बन गए, मुंह
1: बिल्कुल
2: पता भी
1: बन
2: नहीं
1: गए,
2: लगदा
1: बिल्कुल है जी।
2: ये अजे भी देखी जाता भी घग्गर चढ़ गया।
1: जी
2: देखो
1: जी
2: शब्द शब्द का जेड़ा शब्द चाहे किताबी रूप है जी,
1: जी
2: चाहे अस सुनते हाँ चाहे पढ़ते हाँ चाहे देखते हाँ,
1: जी
2: वो थोड़े ते असर करदा ही करदा जी, जब तुसी उन्हूं पढ़ के जिउंदे हो।
1: बिल्कुल है जी
2: तो
1: जी
2: किताबां असर पाउंदियां ने, चाहे तुसी अखबार राही कुछ पढ़ो, वह भी थोड़े ते असर कर दिया ने, इस कोई शक
1: जी
2: नहीं। किताबों का दीप दविंदर जी भी दस के गए ने,
1: जी
2: गलत है कि पढ़ के जे असी उहते अमल करके विचारांगे,
1: जी
2: थोनू किसी चाहे हुण तुहाडे नाल फोन ते गल करना सिखिया जां टवाणा रेडियो ते सिखिया, थोड़े वो लफ्जां ही थोड़े पढ़े हुए थोड़े ते असर करिया है, ता ही तुसी किसी नाल गल कर सकदे हो ना उस विशे
1: बिल्कुल
2: ते।
1: दुरुस्त है जी,
2: ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ।
1: ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ ਰਾਬਤਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2008-09 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕੋ ਕਾਂਸਪਰੇਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਸੂਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ
2: ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਹਿਤਕ ਨਾਵਲ
1: ਜੀ
2: ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ
1: ਜੀ
2: ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਵਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ,
1: ਜੀ
2: ਜੀਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸੀਗੇ
1: ਜੀ
2: ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
1: ਜੀ
2: ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ
2: ਇੰਨੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
1: ਜੀ
2: ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਝੱਲਿਆ।

अपने वीरानाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी, तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक।

जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जे चर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जे चर तेरा ऐ जिस्म लोहा।

0: है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो असी बिल्कुल अच्छे तरीके दे नाल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट की सहायता दे नाल असी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जी,
0: ते जिदा कोई नवियां पोस्टां निकलदियां ने,
1: हाँ
0: अगर
1: जी,
0: साडे कोल इंटरनेट अवेलेबल है, फोन अवेलेबल है, तां असी ओ फाइंड आउट कर सकते हैं कि केड़ियां पोस्टां निकलियां ने साडी क्वालिफिकेशन दे अकॉर्डिंग। अगर सानू कोई मिल जाती है तां असी उस नू अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह नाल मतलब जो इंटरनेट है इस दे बहुत ही यूजफुल तरीके ने इस तो यूज करन दे। बट अगर असी टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करन दे नाल घंटे घंटे बिता देना, बैठे रहना, चैट करे जाना या फिर कुछ भी बस देखे जाना, तो इस दे नाल बेसिकली तो कुछ नहीं होना।
1: बिल्कुल
0: फ्यूचर
1: जी,
0: तो बिल्कुल तुहाडा अग्गे नहीं जा सकता हैगा। इस दे नाल की होना है कि तुहाडा अपना टाइम ही वेस्ट होना, प्लस तुहाडी स्टडीज दा नुकसान होना है, ते मोर ओवर तुसी वो जेड़ा इन्ना अच्छा यूजफुल टाइम, जो इन्ना प्रीशियस टाइम तुहाडे कोल है, वो कदी वापस नहीं आना, तां वो
1: हाँ जी,
0: वेस्ट हो जाएगा।
1: हाँ, इस तरह आपां
0: हाँ
1: देखते हैं वेब चैनल बहुत बने हुए ने गे,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: सारे वेब चैनल है, यूट्यूब चैनल ने गे, वो चैनलों के राही भी बहुत सारे नौजवान जिहड़ा हैगा
0: हाँ जी
1: कमाई कर रहे ने।
0: हाँ बिल्कुल। कमाई दे जो रोजगार दा जिदा तुसी कह रहे हो, जिदा कि बच्चियां दे विच ना बहुत अच्छियां क्वालिटीज होंदियां ने। कई बच्चे ना बड़ा अच्छी क्वालिटी, कोई बच्चा अच्छी सिंगिंग जानदा है या
1: हाँ
0: कोई
1: जी,
0: बच्चा अच्छा राइटर हुंदा है, ठीक है, कोई बच्चा अच्छा स्पीकर हुंदा है, तां डिफरेंट डिफरेंट हर एक पर्सन दे विच एक यूनिक क्वालिटी जो कुदरत ने पाई है वो हर एक पर्सन च है।
1: बिल्कुल
0: बट बच्चे की है, बच्चे नू उसनू पहचानना चाहिए। अगर वो पहचान लेंदा है उसनू, तां जिदा वो अगर उसने सोशल मीडिया दे थ्रू अगर वो सोशल मीडिया नू इन्ना ज्यादा लाइक करदा है, तो इसनू अपना रोजगार बना सकता है। किदां, जिदा वो अपने सोशल मीडिया ते अकाउंट बना लिया उन्हें,
1: हाँ जी,
0: ते उस अकाउंट दे विच वो अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, ठीक
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: अपनी कोई भी क्रिएटिविटी, अगर उसमें कोई पेंटिंग आंदी है तो अपनी पेंटिंग, कोई भी अपनी पेंटिंग बना के, या फिर कोई अच्छा कुछ भी, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है या फिर कुछ
1: हाँ
0: भी
1: जी,
0: कोई अच्छी चीज उस दे विच बना के पोस्ट करे जा रहा है, तो उसनू लाइक्स आंदे हैं, तो उस दे नाल उसनू उसदी इनकम दा सोर्स भी वो एक तरह नाल जो सोशल मीडिया है उसनू बना सकता है।
1: बिल्कुल, हाँ जी, जिस तरह कोई जड़ी है अपने आले दुआले बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां हुंदियां ने, इहो जिहे काम हुंदे ने जिन्हां बारे असीं जानकारी दे सकदे हां वी साडे एरिया दे
0: जी
1: विच आह काम हो रहे ने,
0: बिल्कुल
1: उहनां दे वीडियो
0: बिल्कुल
1: बना के जां असीं
0: हाँ
1: होर
0: जी
1: जानकारी प्राप्त करके उहनां बारे
0: हाँ जी
1: वीडियो बना के भी पा सकदे हां।
0: बिल्कुल
1: ते
0: बिल्कुल
1: एक मेरे ख्याल दे विच नौजवानां नूं इह वी नहीं पता कि जिहड़ा यूट्यूब है जां फेसबुक है, इस तरह दियां कई ऐप्स हैगियां ने जिहड़ियां उत्थे अकाउंट बना के काम करन वालियां नूं पैसे भी दिंदियां ने।
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ जी, इहदे बारे भी जे तुसीं थोड़ी विस्थार च गल करो तां वधिया होवेगा।
0: इस दे विच ये है कि देखो जिदा मैं तुहानू पहले ही कहा, जे अगर तुसी कोई अच्छा काम कर रहे हो
1: हाँ जी,
0: तां उस नू लाइक्स, ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, तो ज्यादा लाइक्स मिलन वालियां जो भी वीडियोस ने जा जो भी है, तां
1: जहाँ
0: उहनां
1: उन्हें
0: नू
1: व्यू ज्यादा होंगे हैं।
0: हाँ जी व्यूज ज्यादा होंदे हैं, तां वो उहनां नू हायर भी मतलब उहनां नू एडवरटाइजमेंट लई यूज भी करदे हैं।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी ओहदे विच कोई अच्छे प्रोडक्ट दी एडवरटाइजिंग दे लई ओ यूज करना है अगर किसी ने, तां वो एडवरटाइजमेंट पाउण वाला तुहानू पेमेंट करेगा और अपनी एडवरटाइजमेंट उहनां दी वीडियोस वगैरह दे विच पाणी शुरू कर देंगे,
1: हाँ
0: तां
1: जी,
0: इस दे थ्रू भी तुहाडा इनकम दा सोर्स जो है जनरेट हो जाएगा एक।
1: साडे नौजवानां नूं इह वी दस्सण दी गल है, देखो वी जिहड़े कलाकार ने उह आपस दे विच इक दूजे नाल विवाद छेड़दे आ, इस तरह दीआं गल्लां करदे आ, इक दो कलाकार जिहड़े इक दूजे दे विरुद्ध बोलदे ने, ते नौजवान उहनां दी हाँ च हाँ मिलाउंदे, उहनां दे पिछे लड़ाई झगड़े करदे ने, पर उहनां दे व्यू वधदे ने, उह सिर्फ इस चीज़ दा फायदा लैंदे ने नौजवानां नूं मगर ला के वी ये कोई विवादित गल करके किसी प्रति, ते नौजवान उन्होंने देखते हैं उन्हों के व्यू भी वधते हैं तो वो कमाई कर रहे हैं, ये अपना जो है एनर्जी समा पैसा वो इधर
0: सब हाँ
1: व्यस्त
0: जी
1: करते हैं।
0: बिल्कुल। मैं इस पक्ष दे विच नहीं हाँ कि साडे अज दे जो नौजवान है वो इन्ना ज्यादा एक्टिवली या फिर इमोशनली किसे किसे भी कलाकार नाल किसे भी नाल अटैच्ड होन,
1: हाँ जी,
0: क्योंकि एक तो बेसिकली उन्हां दी जो उम्र है इस टाइम ते जो एक नौजवान पीढ़ी है साडी, उन्हां नू सब तो ज्यादा उन्हां दे लई प्रायोरिटी उन्हां दा फ्यूचर होना चाहिदा है।
1: बिल्कुल
0: जो
1: जी,
0: लोग अपना फ्यूचर बना के ऑलरेडी सेट हो चुके ने, जिदा कि साडे तुसी कह रहे हो कि कलाकार हैं या जो भी हैगे हैं अपने
1: हाँ जी,
0: सेलिब्रिटीज हैं या व्हाटएवर, तां ओह तां एक तरह नाल अपना फ्यूचर करियर सब कुछ बना के सेट ने ऑलरेडी, उन्हां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦੂਰੀਆਂ
1: ਹਾਂਜੀ

0: हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों। प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार लैके मैं समरजीत सिंह शमी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़। दोस्तो, सिक्ख्या ते रुजगार दे विच तुहानू पता है कि असी वख वख जो मुद्दे ने जुड़े हुए विषय दे नाल, चाहे वह काउंसलिंग होए, चाहे वह रुजगार नाल जुड़ी हुई कोई गल होवे, उहदे उत्ते आपां चर्चा करते हैं, सिक्ख्या नाल जुड़ियां गल्लां करते हैं, एजुकेशन दे उत्ते गल करते हैं। तो इस सारे प्रक्रिया दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा विशा है वह आता है पेरेंटिंग, यानी कि बच्चे का पालन पोषण। सो अज इस महत्वपूर्ण विषय के उत्ते गलबात करन लई साडे नाल जुड़े ने पैनलिस्ट डॉक्टर भावना गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, डॉक्टर भावना गुप्ता जी को चेयरपर्सन हैं टर्न राउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसिज जलंधर। तो इस तो इलावा वो बतौर डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो काउंसलिंग दे विच बहुत सरगर्म ने, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो दे रहे ने, तो स्टूडेंट्स नू करियर गाइडेंस दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा जिहड़ा समां जिहड़ा लगता है, बहुत योगदान है उन्हां दा। तो विशेष तौर पर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स वो ऑर्गनाइज़ करते हैं, तो उहदे विच मापिआं नू किवें जिहड़ा गाइड करते हैं, ये अज आपां जाणांगे उन्हां कोलों। तो डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो जो सवाल ये आता है मन दे विच कि पेरेंटिंग की है, पालन पोषण की है, इनू आपां किवें डिफाइन करते हैं?
1: जी, पेरेंटिंग सब तो पहला सानू ये समझना चाहिए कि सब तो कॉम्प्लीकेटेड जॉब और फुल टाइम जॉब है पेरेंटिंग।
0: जी जी,
1: इहदा कोई निर्धारित समा नहीं है। जब तक तुसी पेरेंट्स हो, पेरेंटिंग चलती रहती है।
0: जी जी,
1: एक बच्चे नू पैदा करना, उस दियां जरूरतां पूरियां करना, और जिस तरह आपां कहने हैं कि सारे इदां ही पलदे है,
0: जी जी,
1: ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग इस तो वध के है कुछ।
0: जी,
1: तुसी एक बच्चे नू वो बनाना जो तुसी बनाना चाहते हो, उसनू टाइम देना पैंदा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: उहदे लई जो एफर्ट्स लगदियां हैं वह सब इस पेरेंटिंग दे विच आ जांदा है।
0: जी जी जी जी, तो ये अपने आप दे विच ही उम्र भर चलन वाला
1: मापिआं
0: लई जिहड़ा काम
1: है, बिल्कुल
0: ते एक दिन वाला काम नहीं हैगा।
1: हां जी हां जी,
0: इहदे उत्ते गल हो गई ते खत्म हो गई।
1: हां जी,
0: इहदे जी पर इहदा मतलब कि इहदे लई ते फिर किवें आपां इहनां नूं डिफाइन करांगे? हर बंदे दा अपना सुभाअ है, ते आपो अपने रूल, आपो अपने जिहड़े तरीके नाल अपने बच्चिआं नूं पालन पोषण उहनां दा करदे आ।
1: हां जी,
0: ते किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने उह सब उभर के आउंदियां ने, किस तरहां आपां कहिंदे आ टाइप्स इहदियां?
1: हां जी हां जी, वैसे ते थोड़े बहुत फर्क दे नाल हर एक दा स्टाइल डिफरेंट है
0: जी,
1: पर मुख तौर ते चार पेरेंटिंग स्टाइल्स गिने गए है।
0: जी जी,
1: जिन्हां विचों सब तो पहला जो अपने इत्थे आम चलता है, जिसनों असीं कहने हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल वो है जिस दे विच असीं बच्चियां नूं अपना हुक्म मनन दी ही तालीम दिंदे हैं।
0: जी,
1: मैं तैनूं जो कहा बस
0: ओके है।
1: हाँ,
0: ओके
1: है। जे बच्चा क्वेश्चन करता है तो सानूं लगता है कि वो अगे बोल रहा है, वो साडी इज्जत नहीं कर रहा।
0: जी जी जी जी,
1: ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है साडे। असीं उहदे नाल रीजनिंग नहीं करदे, असीं उहनूं लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करदे।
0: जी जी जी,
1: और सानूं इह लगदा है कि इह बच्चा साडे कहणे च नहीं है, जे उह बार बार क्वेश्चन करदा है या साडे डिसीजन नूं चैलेंज करदा है।
0: जी जी जी,
1: साडे कोले उहदे हर जवाब दा इक्को ही, उहदे हर सवाल दा इक्को ही जवाब हुंदा है, क्योंकि मैं कहा।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: इह अपने आम चलदा है।
0: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ,
1: ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਜੀ ਜੀ,
1: ਠੀਕ ਹੈ,
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਟਾਈਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ।
0: ਜੀ,
1: ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
1: ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
0: ਜੀ ਜੀ,
1: ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
0: ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
1: ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ,
1: ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਹੈ ਨਾ
0: ਜੀ।
1: ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
1: ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ
0: ਜੀ ਜੀ,
1: ਇੱਕ ਹੈ ਥਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।